स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं षष्ठी देव्य स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं षष्ठी देव्य स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं षष्ठी देव्य स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं षष्ठी देव्य स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं षष्ठी देव्य स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं षष्ठी देव्य स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं षष्ठी देव्य स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं षष्ठी देव्य स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं षष्ठी देव्य स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं षष्ठी देव्य स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं षष्ठी देव्य स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं षष्ठी देव्य स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं षष्ठी देव्य स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं षष्ठी देव्य स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं षष्ठी देव्य स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं षष्ठी देव्य स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं षष्ठी देव्य स्वाहा।

आज की महफिल जनाब राज इलाहाबादी साहब की एक गजल से शुरू कर रहा हूं, और गजल से पहले ये खिताब पेश है

0: जवाब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाए तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।